0: असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तब ताओ संख भगत गुण ज्ञान विचार संख सती असंख दातार उदरत कमन कहा विचार वारिया न जावा एक बार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर
1: असंख
0: पापी पाप कर जाहे संख उड़ियार

0: दसवीं छपै चंद द्वै प्रसाद चक्कर चिन्ह अभरण जात पात नहिं जै
1: रूप रंग रेख ते को कह न सकत कहे
0: अचल मूर्त अनुभव प्रकाश में तोज कहि जै
1: कोट इंद्र इंद्राण शाह शान गुण जय
0: पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत मंत्रण कह
1: अब सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्ण सुमत कुजंग कुरिया
0: नमस्तु अकाले नमस्तु कृपा।

0: भूत है, कर्ण है,
1: गंध है, बंध है, दूध है, दंध है,
0: अमीक है, रफीक है, तंध है, बंध है,
1: बुध है, सूझ है, अकाल है, जल है,
0: अला है, अजा है, अनंत है, महंत है,
1: अलेख है, निश्रिक है, निलंब है, असंभ है,
0: अगम है, जम है, अपूत है, अछूत है,
1: अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपरम है,
0: अजीत है, अपीत है, अवा है, अगा है,
1: अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है,
0: यंग पर्याप्त

0: नमो पान पाने नमो मान माने
1: नमो चंद चंद्र नमो पान पाने
0: नमो गीत गीते नमो ताम ताने
1: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
0: नमो पान पाने नमो बाद बादे
1: नंगे नाम समस्ती स्वरूप
0: प्रभंगी प्रमाथे समस्ती विभूते
1: नानक कलंकी स्वरूप
0: नमो राज राजेश्वरम परम रूपे
1: नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे
0: नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे
1: नमो शस्त्र पाने नमो शस्त्र माने
0: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता नमो जोग जोगेश्वरम परम जुगते
1: नारायण क्रूर कर्मे
0: नमो प्रेत अप्रेत देवे सुकर्मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
0: नमो शाह शाहं नमो पूपे
1: दान दान नमो दान दाने नमो मान माने
0: नमो रोग रोगे नमस्तं शिनाने
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं
0: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
0: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा प्रकटता
0: अदो उर्ध अर्धं अग्न ओघहर्ता
1: परम परम परेश्वरं प्रोजपालं
0: सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारं
1: अछेद्य अपेद्य नामकाम
0: समस्त पराजी समस्त धामं
1: तेरा चाचरी छंजले हैं ले हैं पीठ हैं पे हैं
0: प्रभु हैं अजू हैं देश हैं पेश हैं पजम प्रिया
1: चंद्र गादे अबादे अनंदी स्वरूप
0: नमो सर्वमाने समस्ती निदाने
1: नमस्तोंग ने नाथे नमस्तोंग प्रमाथे
0: नमस्तोंग गंजे नमस्तोंग पंजे
1: नमस्तोंग काले नमस्तोंग पाले
0: नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे
1: नमो राज राजे नमो साज साजे
0: नमो शाह शाहे नमो माह माहे
1: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
0: नमो रोग रोखे नमो शोक शोके
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व
0: नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं
1: नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं
0: नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं
1: नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं
0: नमो सर्व रंगे त्रिवंगी अनंगे
1: नमो जीव जीवे नमो बीज बीजे
0: अभिजे अभिजे समस्तं कृषिजे
1: पालं स्वरूपे को कर्मं प्रणासी
0: सदा सर्वदा रेत सिद्धं निवासी
1: चरपट छंत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे
0: अखाल जोगे चाल भोगे
1: अचल राज्य अटल साजे
0: अखाल कर्म अलख कर्म
1: सबंग दाता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं पाने सर्वं माने
1: सर्वं प्राण सर्वं त्राण
0: सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता
1: सर्वं देवन सर्वं पेवन
0: सर्वं काले सर्वं पाले

0: चंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता
1: चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने
0: चतुर चक्र होती चतुर चक्र पड़ती
1: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे
1: चतुर चक्र मानी है चतुर चक्र दानी है
0: छन्न सत्र नमित्र परमग्न पित्र
1: नकार मग्न काये जन्म जाये
0: चित्र नमित्र पड़े है पित्र
1: प्रतिशा दिशा दृशा कृष
0: भगवती छंद त्व प्रसाद करते क्या चित देसे क्या पिछ पेश
1: क्या गांज कर्म है क्या पंज भरम है
0: क्या पिछ लोके क्या दित सोक है
1: क्या भूत भरना के भूत करना है
0: क्या दिन प्रवाह के तमंग तो जा है
1: क्या शोक भरना के सर्वा भरना है
0: जतन कतरे के चतुर क्षत्रिय है
1: ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपम रूप है
0: याद देव के आप पेव है
1: चित्रुंग बहिना के एक का अधीन है
0: रोजी रजा के रही में रहा के
1: पाक बेव है के गह बोल गैब है
0: क्या फल गुना है के साहन सा है
1: कारण कुनिंद है के रोजी देहांत है
0: में के कर्म करीम है
1: सर्वम कली है कि सर्वम दरी है
0: सबत माने के सबत दाने है
1: के सबत्र गौना के सबत्र पौना है
0: सबत देसा के सबत पैसा है
1: के सबत्र राजा के सबत्र साजा है
0: सबत दीना के सबत लीना है
1: के सबत्र जाहो के सबत्र पाहो
0: सबत देसा के सबत पैसा है
1: के सबत्र काला के सबत्र काला है
0: सबत हंता के सबत गंता
1: के सबत्र पेखी के सबत्र पेखी
0: के सबत काजे के सबत राजा
1: के सबत्र सूखा के सबत्र साहेब
0: कलाम
1: है
0: गरीब
1: बुलंदर मकान है जमीन जमान
0: है अनेकल तरंग है पेद है पंग है
1: अजीज निवास है गरीम लुखराज है
0: अनेकल स्वरूप है तिपक विभूत है
1: प्रभोक्त प्रवाह है सुजोक्त सुधा है
0: सदावन स्वरूप है पेद अनूप है
1: समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
0: समस्त सलाम है सदैव लकाम है
1: निर्वास रूप है अगाध है अनूप है
0: अगाध रूप है नाद रूप है
1: अनंगी नाम है त्रिभंगी त्रिकाम है
0: त्रिभंग तपादे गंजे अगाधे
1: सुभंग सा भागे सु सर्वान रागे
0: तिपक स्वरूप है छज्जय छूत है
1: नरकम प्रणास है पृथ्वी और प्रवास है
0: नगर सदा है विभक्त प्रवाह है
1: निरोक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है परजोक्त अनूप है
0: नगर सदा है विभक्त प्रवाह है
1: अनोक्त स्वरूप है परजोक्त अनूप है
0: चार त्रि छंद अपंग है।

0: हैं, नाश है, प्रकाश है,
1: निश्चिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अदेख हैं,
0: अलेख है, पेख है, टा है, अगा है,
1: असंभ है, अगम्भ है, अनीर है, अनाद है,
0: नित्य है, सुनित है, जात है, अजात है,
1: चरपुट शांतो प्रसाद,
0: सर्वंघता सर्वंघता,
1: सर्वंख्यता सर्वंग्यता,
0: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता,
1: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं,
0: सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं,
1: सर्वं जुक्ता सर्वं मुक्ता,
0: सावच्छंद त्वय प्रसाद, नमो नटकनाथ सदा प्रकाशे,
1: अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते,
0: परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे,
1: प्रकाश स्वरूपे निर्वाद विभूते,
0: अनंगी अनामित पंगित कामे,
1: निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे,
0: न पौत्र न पुत्र न सत्र न मित्र,
1: न ताता न माता न जात न पात, सदैवं प्रमाह जहं जहं,
0: भगवती छंद त्वय प्रसाद, के जाह जुहर क्या है जरह जोर है,
1: हमेश्वर सलाम है, समस्त लोक नाम है,
0: साहेब दिमाग है कि उसनल तराग है,
1: कामल करीम है कि राज को रहीम है,
0: के रोजी तहंद है कि राज को रहंद है,
1: करीम और कमाल है कि हुसन और जमाल है,
0: गली बल खराज है, गली बल निवाज है,
1: हरीफ और शिकान है, हरास और उपकान है,
0: कलंक प्रनाश है, समस्त निवास है,
1: रंजन करीम है, रजाई को रहीम है,
0: समस्त जुपा है कि साहेब के राह है,
1: कि नरकम प्रनाश है, बहिष्ट और निवास है,
0: सब बल गौन है, मैसल रवन है,
1: मामूल तमीज है, समस्त लजीज है,
0: परम परमीश है, समस्त लजीज है,
1: परम परम अदेश्वर रेख है, मेश्वर भेख है,
0: जमीन और जमाल है, विकलमा है,
1: मूल कमाल है, के जुरे तो जमाल है,
0: प्रकाश है, क्या मित्र सुभाष है,
1: आजब स्वरूप है, के मित्र भूत है,
0: क्या मित्र प्रसा है, क्या आत्म प्रभा है,
1: के अचल अनंग है, के मित्र भंग है,
0: मनपा छंद त्वय प्रसाद, मन मन प्रणाम, गुण गुण मदान,
1: हर भर गंज, हर नर प्रभंज,
0: गुण गुण प्रणाम, मन मन सलाम,
1: हर नर अखंड, भर नर अमंड,
0: अनुभव अनास तो त्रास,
1: अनुभव अनास, मन मन प्रकाश, गुण गुण प्रणाम, जल थर मुदाम,
0: जंग आसन अपंग,
1: उपमा पार गत में त्योदार, जल थर महंत, देश विश्व अंत,
0: अनास्ते तो त्रास,
1: अजान बाहु एक कैसा,
0: ओंकार आद कथनी अनाद,
1: कर खंड ख्याल, गुरवर अकाल,
0: कर कर प्रणाम, चिचर नाम,
1: अन छिज गात, आज नबात,
0: अन जंज गात, अन रंज बात,
1: अन टुट पर नार, अन ठट पार,
0: अठ चीट करम, अठ चीट करम,
1: अन ब्रण अनंत दाता महंत,
0: हर बोल मना छंद तो है प्रसाद, कर डाले है, अड़काले है,
1: कर खंडन है, मैं मंडन है,
0: जगदेश्वर है, परमेश्वर है,
1: कल कारण है, सर्व वर्ण है,
0: चक्के तन है, चक्के कर्ण है,
1: मन माने है, जाग जाने है,
0: सर्वंग पढ़ है, सर्वंकर है,
1: सर्व पासे है, सर्वनाशे है,
0: करना कर है, बसंबर है,
1: सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है,
0: मंडस है, कल खंडस है,
1: परते पर है, करना कर है,
0: करना कर है, जपा
1: जपा जप है,
0: करना करना,
1: अकृता कृत है, अमृत
0: अमृत अमृत है, करना कृत है,
1: अकृता कृत है, धरणी धृत है,
0: देश्वर है, परमेश्वर है,
1: अकृता कृत है, अमृत अमृत है,
0: अजबा कृत है, अमृत अमृत है,
1: नायक है, खालक आयक है,
0: संबर है, करनाले है,
1: नृप नायक है, सर्व पायक है,
0: भंजन है, अर्गंजन है,
1: प्रेप तापन है, जाप जापन है,
0: कृत है, सर्व कृत है,
1: कर्ता कार है, हरता हार है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है,
1: आत्म बास है, जास के जास है।

0: न रंगे न रूप न रेखे
1: कर्म कर्म गंजे लेखे
0: प्रयाचन नमस्त प्रणाम समस्त प्रणासे
1: गंजल नामे समस्त निवासे
0: काम विभूते समस्त स्वरूपे
1: कर्म प्रणासी सुतर्म विभूते
0: सदानंद सत्यम प्रणासी
1: करीम कनिंदा समस्त निवासी
0: जय विभूते जय गुणी में
1: हरिम करीम करीम रहीम
0: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते।

0: सुरार्दन सुर सुधारक संत समूह अनेक मति के।
1: सारे ही देश को देख रहे हो मत कहूँ न देखे पांच पति के।
0: श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के।
1: मतंग जरे जर संग अनूप अतंग सुरंग सवारे।
0: और तो रंग को रंग से कूदत पौन के गौन को जात नवारे।
1: पारी भुजान की भूप बिली बेजा शीस न जात विचारे।
0: एते भय तो कहाँ पे भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे।
1: जीत फिर ऐसा दे सान को बाज टोल मरदंग नगारे।
0: गोचित गुड़ के जान के सुंदर हेंसत है राज हजारे।
1: दूत वेख भगवान के पूबस कौन करे नहीं जात विचारे।
0: श्रीपद श्री भगवान पजे बिने अंत को अंत के धाम सदारे।
1: तीरथ नाम दे आदम दास संजम अनेक अनेक बसेख है।
0: वेद पुराण के देव कुरान जमीन जमान सवान के पेख है।
1: कौन हाज तीजत तार से वैसो बेचार हजार के देख है।
0: श्री भगवान पजे बिन भूत एक रतीब ने एक ना देख है।
1: सुद सपाद रंत बास सार सुना दर नान दलेंगे।
0: भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे।
1: तोर अरीर मरोर मुआसन मत मतंगन मान मलेंगे।
0: श्रीपाल श्री भगवान कृपा में त्याग जहान निदान चलेंगे।
1: अनुहार बड़े बरे आ रहे बचारे सार की तार पछैया।
0: तोर के देश मलेंद मुआसन मात के जान के मान मलैया।
2: गाड़ के रात के तोर नार सुबात नी चकचार लवैया।
0: साहिब श्री सब को सरनायक जाज गन एक सो एक लवैया।
2: नानक ते सुनंद साच पूत पेक पवा जपेंगे।
0: जीव जिते जल में थल में पर ही पर में सब थाप थपेंगे।
2: प्रतापन बाज जाय तुर पापन के वो कुंज खपेंगे।
0: सास मुँह पर सन फिर जग छत्र सब है वो लोग जपेंगे।
2: मानव इंद्र किंजन रात तुम जोन तो रोको राज करेंगे।
0: कोट स्नान गजात दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे।
2: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत सहजम पास पड़ेंगे।
0: जे नर श्रीपद के प्रस है भक्ते नर फिर न दे तरेंगे।
2: दानव ते फरंद कहा प्यो चौथो लूचे भूल के बैठ शो भक्त लगायो
0: ना फिर।

0: कि फतेह पातशाही दशमी को व्यवहार बेनती चौपी हमरी करो हाथ रचा पूर्ण होए चेत की इच्छा
1: अचन अनुमन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा
0: हमरे दुष्ट वह तुमका वो आप हाथे मोए बचावो
1: सुखी बसा मोरो परवारा सेख सेख सब करता रहा
0: मोर छानिज कर दे करी।

0: सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्र हमारे मारी है
1: आप हाथ मुझे भरिया मर कार का त्रास निभरिया
0: पूजो सदा हमारे पचा श्री अस्तो जू करो रचा
1: राख रो मैं रख हारे साहेब संत से आए प्यारे
0: दीन बन दोषण के हमता तुम हो पूरी चतुर दास कंता
1: काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए शिव जू अवतरा
0: काल पाए कर भीषण प्रकाश सकल काल का किया तमाशा
1: जब काल जो की शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो
0: जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा
1: जवन काल जब
0: जगत
1: बनायो देव जय जब सुनो
0: आद अंत एक काय अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा
1: नमस्कार तिस ही को हमारी शक प्रचारन आप सवारी
0: सेवकन को से गुण सुख दियो शत्रु को पर मोह बद कियो
1: कट कट के अंतर की जाने परे बरे की पीर पहचाने
0: चीटी ते कोंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
1: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
0: एक एक ही पीर पहचाना कट कट के पट
1: जब कर्क करा करता रा प्रजाता तब दे अपारा
0: जावा कर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ
1: देते बलन से सब तारे आप अपनी बूझ विचारे
0: तुम सा भी ते रहत निरारम जान तो बेद पे दे रहे आरम
1: निरंकार ने

0: तोय तेती
1: तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसारा
0: एक रूप नूप स्वरूपा रंग प्यो रा के पूपा
1: अंड जेरा से तजकीनी उर्बुल खान बोर राज दीनी
0: को फूरा लाह वे बैठा को शिवत को संक्रे कहता
1: सगरी सेठ दिखाए अचंबो आज गा स्वरू से अंबो
0: अब्र छा मेरी तुम करो सिख बार सिख सुगरो
1: दुढ़ जिते उड़वात उत्पाता सकल मलेश करो रण काता
0: जे अस तो तब सरनी परे तिनके दुख दुख है मरे
1: पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब डारे
0: जो कल को एक बार त्या है ताके काल निक न ऐ है
1: रचा होए ताए सब काल अंधोट रिटरे तत्काला
0: कृपा दिस तन जाय नहार हो ताके ताक तिनक मोहर हो
1: रेत सिद्ध कर हो सब होई दुढ़ चाश हो लगे न कोई
0: एक बार दिन तुम्हें सवारा का

0: क्या करे विचारिया।
1: एक भारम भूले फिरे दैद एक नाम लाग सुआरिया।
0: प्रसादी मन प्या निर्मल जिना पाना पावे।
1: कहा नानक जिस दे प्यारे सोई जान पावे। संत प्यारे हो करहानी कथ की केत द्वारा पाईया।
0: तन मन तन सब सब गुरु को हुकम न पाईया।
1: हुकम न गुरु के रागावो सच्ची वाणी।
0: नानक सुनो संत कथियो कथ कहानी।
1: ए मन चंचला चतुराई किने न पाया।
0: चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरा।
1: ए माया मोहनी किने भरम भुलाया। कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया।
0: कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया।
1: ए मन प्यारे आ तू।

चरण कमल हृदय तर ध्यान तूर संतन की मस्तक लाए जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए जिसका भेटत जिस भेटत मिटै।

हा रंग राम करीम वाला पंजवा रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले माया छले कन कामनी रहाव पंडार बर बखर बपेख लीला मन साधार संगामनी सुत कलत्र प्रात मीत उर्ज पर ब्रह्म होए बिरख श्यामनी चरण कमल सर नानक सुख संत पावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली माला नौवा ते पदे।

कनक कामनी सो हेत वधाए की नाम विसरै परम गया रहाउ जब ससंजम सील न राख्या प्रेत पिंजर मैं काष्ट भया पुंदा निशान न संजम सा संगत बिन बाद जय आला वचला के जन्म बिसारे।

किन्ही कुंगर नृत्य कराए किन्हू वर्तने माला पाई किन्ही तिलक गोपी चंद लाया मोहे दीन हर हर त्याया किन्हीं सिद्ध बो चेट।

टूट भई टूट परीत गई भरबोल दुरमत पर हर छाडी ढोल टूटे गंठ जड़े पड़े सिंह पड़े विचार गुरु शब्दी कर कर सार लाहा सत नावे तोटा त्रिपुण ठाकुर प्रीतम मोटा ठाक मनुआ डारा कोटाए ठाक मुय गुण पछताए ठाक एक सवाए ठाकुर एक सवाई नार बहुते फिर स्प्रे कुड़ियार पर कर जाती ठाक रहाई महल बुलाई ठाक न पाई शव सवारी सस प्यारी साई सुहागन ठाकुर धारी।

मन झूठा जमजोहया गुण चले नाल मन मैं मन उल्टो मरे जे गुण हुए नाल मेरी मेरे कर्म हुए बिना दुख पाल गढ़ मंदर महला कहा जो बाजी दीवान नानक सचे ना बिने झूठा हुण जाने आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान जो आवैसे जाए हुण आ गए पछताए लक्ष राशि मेदनी घटे न वके वधे उताए से जन उबरे जिन हार पाया धंधा मुआ विगुती माया जो दिसे सो चल से किस को मित करे ओ जो सरपो जो सोपो अपना तन मने अगे देव आस्थिर करता तू धनी तिसी की माय ओट गुण की मारी हो मोई शबरती मन चोट राणा रावना खोले रंगना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंधे तीर राह बुरा पे हाँ बला सर डुकरे सगा पै मैं तने अवगुण चोर मोए विन गुण क्यों कर जा गुणिया गुण लै गुरु मिले क्यों तिन मिलो प्यारे गुण तिन ही जैसी थी रहा जब जब दे मुरारे अवगुणी भरपूर है गुण पी वसै नाल बिन सतगुरु गुणा जापने जिचर शब्द करे पे हजार लश्करियां कर संगले आए जो लखाए कार

चाकर कही कसम का सो है उत्तर देव जोग आए अपना तक नवैसे प्रीत मत उड़िया जय भाव त्या दे आप करे किसी आखी अब न कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दुली चा पाए नरक निवार नर नर सचो र सचे नाय विनित्र वानत्र त्रुंडत फिर मन मै करो विचार लालत बहु मान की सतगुरु हथ भंडार उत्तम होवा प्रमिल एक मन एक भाए नानकुरी तुम रस मिले लाहा ल परथाए

खरा तू खिमा सासु पाए खर्च खरा तन त्या नह तू आपे वस शरीर मन तन मुग जापे सदा गुण अंतर मन धीर हमे खबे कपाए से बीजो वत विकार जंतु पाए विच पाए न करता अर्गे फार सृष्टि पे न जाने के सृष्टा करे सुने चोय संग पे कोई सर्दी आई है संग पे पूर्व लिखे का लिखे की पाई है संग पे का चा कारण चा कर चोर संग पे साधना चा ले होर भिण साचे ना इंद्र दर गए मान हर सपे छुटे निधान हिरत हेर सकी हो।

सिद्ध सुभा करे आसन बैठे संसभा जयकार तिशिया गिरह रास मारे साचा प्रबोधकार कमस्तक काट तरी तिशे आगे मतान मणि आगे दे नानक संत मिले सज पाई साज भाई जसले हो क्या पड़ी क्या पवी कै सुचा साज सुद बिन भुगत न होए रहा कौन तुम्हें क्या नाऊ तुम

नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राव। खड़ खड़ वैसन तरइए चल सगुरु भाए सहज आए हुकुम पट सदाए नानक सदा रजाए। आसन बसन थिन रहने ऐसे गुरमत पाए न गुरमुख बूझे आ पछाने सचे सा समाए। दुनिया साकर तुतर गई है क्यों कर पाइए बारो चरपड़ बोले अब तू नानक देश सा विचार। आपे आखे आपे समझे तिसका उतर दीजिए साज को तुम पार ग्रामी तिसका बैस तुझका बैसन दीजिए। जैसे जल में कम लाल में मुर्गाई ने सान सुर सद पाव।

मार्ग मुसे मत्र मुसा न सब न चिने कवे लवे कुबान नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पो पावे गुरमुख बाणी खड़खड़ावे गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे गुरमुख नानक गुरमुख सा समावे गुरमुख परचे वेद विचारे गुरमुख परचे तरिए तारे गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचे अंतर विज्ञानी गुरमुख पाई हलक पार नानक गुरमुख मुख द्वार गुरमुख कद कथे विचार गुरमुख निवै सा परवार गुरमुख जबी अंतर प्यार गुरमुख पाए शब्द।

है कौन बुद्ध गुरमुखत रहे कौन जो कौ जो का संहारे बोले बाणी नानक विचारे सब ताकत पाख सस जो सुपार सत कर सूरब से मिटे दिहार।

की मुदकर न कोय जय दिकतर सुमाहे नानक पार पर सच भाई सो शब्द कहाँ वास कथिले जितरिये भोजल संसारो त्रै गुण सत अंगल बाई कई को तिसको कौन धार बोले खेले सरूप क्यों कर लखाए लखीए सुन स्वामी सजनान करण वे अपने मन समझाए गुरमुख शब्द सतन लागे करण दरी मेल मिलाए आपे दान आपे बिना पूरे भाग समाए सो शब्द क्यों भी अंदर अंतर वास देखा तै सोए पवन का वासा सुन वासा कलकल दर सोए नदर कर शब्द मैं घट मैं वसै विच परम गुआए तन मन निर्मल निर्मल बाणी ना मोह मन वसाए शब्द गुरु पावसा करतरी तुझे को जाने चैन वरणी छाया माया नानक शब्द पछाने त्रै सतंगल वाई औ दो सुन सच हार गुरु गुले सत विरोले चिन्ह।

जोधपुरे पुरबाणी की धुनी सलोक महला तीजा। सतगुर ते सतगुर सहजे का खेत है जिसनु लाए भाओ, नाउ बिजे नाउ गुए ना मेरे समाए। हुमे हु बीजै सा सकै बिलाए, ना देख ना कि जन्मे ना गुए, जो बख्शे सो खाए, जो अंग सती मनोलिया।

का कहना मूर्ख है, क्या लखण है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख जे मुक्त अहंकार मरण, इतक मन सदा दुख दुखी मैं रहनात, प्यारे भय को कै संजम रहना, कै संजम करना। गुरु सोकर विचार उस अलिप्त तो रहना, हर नाम जपे ना उदा उदरे उस पिछे डुबदे पितरना। नानक जो तिस पावे सोकर जो देस उदैन महला ती पहला। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कडवे, तबल पर तल बाप सुनी आखिया, बाकी जना दे जराइल फरेस्ता होशिया तय। हाँ जाना।

प्रभु वह कृपण संचैतन जाए, पंडित रो वह ज्ञान गवाए, बाली रो वे नाय पतार, नानक दुखिया सब संसार, मने नाव सोई जन जाए, औरी कर्म लेखे लाए महला दूजा, जापता सब कुछ मनी अवर करा सब बात, नानक मने मनिए बूजे गुर प्रसाद पौ, काया हंसुर मेल कर ते लिखवाया, समय वाला गुप्त वर्ता गुरमुख प्रगटाया, गुण गावरे गुण उचरे गुण मैं समाए, सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया, सब कुछ आपे आप है आपे देवड़ियाई। सलोक महला दूजा, नंदा नानक इंदा होए गए रत्न परख जाए, रत्न सारण जानी आवे आप लखाए, महला दूजा रत्न केरी गोथली, रत्नी बोली खोली पाए, वखर ते बन जा रहा दुआरे समाए, जिन गुण पले नानका मानक बन जैसे, रत्न सारण जाननी इंदे वत्तै लोए पौड़ी, नौ दरवाजे काय कोड़ै दसवें गुप्त रखी जय, बजर कपाट न खोलने गुर शब्द लखली जय, अण दरवाजे तुन वजद गुर शब्द सुनी जय, तित कठ अंतर जानना कर भगत मिली जय, सगमाय वरदा जिन्या पेर चन रचाई।

0: पूरे प्रभु के सिमरन कबू न चूरे।
1: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी।
0: प्रभु के सिमरन ने चले आसन, प्रभु के सिमरन कमल विकासन।
1: प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार।
0: सिमरे से जन जल को प्रभु मया, दानिक जन की सन्नी पया।

0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख ने रे
1: सको राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख कह सुनो जन भाई सुख सोलड़ा हर त्यावो सुन हर गुण पीने सहज सुभाए गुरमत सहजे नाम त्याए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया जन्म मरण भाव भागा अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जा हर लिव लागा जिन को कृपा किनी स्वामी तिन अंदन हर गुण गाए जिन को कृपा किनी मेरे स्वामी तिन अनदन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज सुभाए जुग मैं राम नाम निसतारा गुरते उपजे शब्द बिचारा गुर शब्द बिचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए सहजे गुण गावे दिन राती किल बख सब गवाए।

साजन आए बुठे घर माही, हर गुण गावे त्रिपत अगाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिल भूख न लागे आए, दै दिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम त्याए, नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को

ब्रह्म ज्ञानी के मनो प्रकाश जैसे धर उपरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सहल गिरी नाथ मृस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की

0: नहीं मरता।
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी
2: हर नाम वजी वादाई, हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हृदय

0: संत कह दुखण आरजा कटै संत कह दुखण जमते नहीं छुटै संत कह दुखण मत होए मलीन संत कह दुखण सोभा ते हीन संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संतन कह दुखण सर्व जोन पाए संत कह दुखण त्रिक जोन क्रमाए
1: संत
0: कह दुखण ते सब जाए संत कह दुखण नीच निचाए संत का नंदक माताई संत का नंदक टिक न पाई
1: संत
0: का नंदक राय तहीन संत का नंदक दुखिया दीन
1: संत
0: की निंदा दोख मैं दोख नानक संत पावे तो उसका भी होए मोख संत के दुखी कौ डान लाग गए संत के दुखी कौ सब ते आग गए संत का दुखी जन्म मरै संत की दुखना सुख ते टरै संत का दुखी अद बीत टूटे संत का दुखी कितै काज ना पहुंचै
1: संत का दुखी
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सा

0: सोई लागे जिसनो कृपा करे बट पागे।
1: नाम जप पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान।
0: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग।

0: चरंदर निर्मल रीत
1: पेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगा गवे पूरा गुरे अखे हो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेख्या हो संत ये बाए कुस्तत अनेक सतपुरख पूरण बबेक निराहार निर्वैर सुखदायिता की कीमत कने न पाई
0: भक्त बंदा नित करे चरण कमल हृदय सिमरे
1: सद बलिहारी सद गुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने
0: हो आदेश पावे जन कोई अमृत पीवे अमृत होए
1: उस पुर का नहीं कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण तास
0: नाम ले सच उपदेश सेवको दे
1: मो माया के संग न लेप मन में राखे हर हर एक
0: नानक परम मोह तेरे नासे
1: तब तुम्हारे ठंड वरताई अंध पिया दुख नाठे पाई
0: साधु के पूर्ण उपदेश
1: हो चुका निरपो बसे सगल ब्याद मनते खै नसे हित पाई चुके भ्रम गमन सुन नानक हर हर जस सरवण अपने चरत प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए
0: दूजा नाही कोई सरवण तरे को सोए।

0: आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरुदेव अनकुपा न छूटन हारे सिमर शास्त्र वेद विचारे
1: करो मन लाए मन बचन।

0: ब्रह्म मिल सरदा पूर
1: सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो
0: कमस्यो लागे प्रीत भक्त करो प्रभु की नित नित
1: एकोटे को आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार
0: देश महा सुख होए।

जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब अर्क शोक किसे व्यापत अपन खेला वर्तीजा नान करने हार ना दूजा।

0: ब्रह्मा जैसी आज्ञा तैसा कर्म।
1: पौन पानी बैसंतर माए चार कुंट दे दसे समाहे।
0: बिन कहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ।
1: वेद पुराण सिमृत में देख ससियर सूर निक।

0: प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिनके साथे मिट गए बैर पए सब रेणु अमृत नाम साध संग लैण
1: गुरुदेव पूर्ण हुए।

फिर जा पश्चिम जब आकार क्षिणा दृष्टि तब पापुन तब कहते होता जब थारी अपन सुन समाद तब बैर ब्लोक संकुमा जब उसका वरण चे न जावते हर शो को खुज व्याप जब अपने आप पार परम तम ओक अंक दोत परम आपन की लिया वर्तीजा नानी करण हर दूजा जा उत्प्रव केवल धनिता बंद मुझको किसको गणी जावे कर पार तब नरक रू को कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सहसवाय तब शिव शब्द कहो गिठा जब आपे अपनी अपनी ज्योत रहे तब कम निरकम खतर रहे अपने चलता करण हार नानक ठाकुर गम पार अपना शिज को अपने आसनता जन्म वरण को का अविनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो जो है जब अब कथा गोचर प्रवे का तब चित्रकूत किस पोचत लेखा जब नाथ नरंजन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे अपने आप आपी चर जा नानक अपन रूप आपी पर जा जय निर्मल पुरुष प्रभुपाद होता तय निर्मल कहो कह धोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अपमान जय स्वरूप केवल जगदीशता छल छद्रक्त को की जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय कृषि भूक अंतरता करण करावण करण हार नाण करते का न समार जो अपनी शोभा अपन संगुण आय तब कौन बाय मत माए भावित सतवाय जा सर्व कला पे प्रवीणता वेद कतीब कहा को चीन जब अपने आप आप उतारे तो सगन सगन का विचार जब अपन उच अपने अपने रहता कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विषम विषमर विषमाद नानक अपनी का जन वाप जय छल छेद भीष्म वंग से व्याप्त माया पसुआ पै दय गुण का नाई प्रवाय जय कह के भगवंता तय कौन अचिंत लागे चिंता जय अपना पाप तैयार अतः कौन कथे सुन कौन सुन यार बहु बेहंत उचते ऊंचा नानका पुष्पा पे पहुंचा जा प्रचो प्रपंच अगार तय गुण मैं किन्नो विस्तार पापुन तय पही गात को नर को सुर गुंचाओ त्याल जल माया जंजाल हुमे मो परम पै भार दुख सुख मान अपमान प्रकार के उखे आने अपन के लिए कर देखे खे को चैतव नानक कह जब गत भगत आप जय पसरे पासार सुन प्रदा दो पाका आपे तनी उनकी शोभा बणी आपे कौतिक रेण चो जे आपे रस भुगन निर्जोग जिस भाव तुसी अपना लावे जिस भाव तुसी खेल खिलावे बेशुमार थागने तुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानके को बसरिया दूजा कै दृष्टा रस्पति आप कथे आप सुने हार आपे का विस्तार जा तिस भवत से शुभाय अपने भाणी लै समाय तुम ते भिन्ने किछ होय अपन सुख सगत पुराय जाकू प्रभु जी आप बुझाए सतनाम सोजन पाए सो सुंदर सी तत् कवेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सबता के आदीन दयाल नाथ को ना जिस राखे जिस कोय न मारे सो मुआस मन सारे तिस ते अवर कहाँ को जाए सब श्री निरंजन राय जी की जुग जाके सब अंतर बार जनु साथ गुण दान बेअंत बार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूरे दयाल सब पुरुष कृपाले अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे ब्याल प्रतपाले जी अनुभव पा जो जो रच सत सत्यात जिस भाव है तुझे ले मिलाए भगत कृहार के गुण गाए मनंत्र विश्वास कर मानिया करण हर नानक इक जानिया जन लागा हरे के नाय तिसकी आसन बिरती जाय सेवक को सेवा अपने आय हुकुम बुझ परम पद पाए स्थे प्रणय विसार जाके मन विसरनकार बंधन तोर भय निर्वैर अंदर पूजे गुरु के पैर ए लोक सुखे पर लोक सुहले नानक हर प्रव्यापे मिले सासंग करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत्कुरु विचार दृढ़ उदय का करो उधार अमृत भजन हर के गुण गाओ प्राण तरण गए सुहाओ आठ पर पपे खुंडेरा मिटे ज्ञान बिनसेन देरा सुन बदे सिर दे वसाओ मन चे नानक कुल पाओ हल पल दुले सुहा राम नाम त्रुतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन सिद्धि सास प्रिखिया मंत्र नाम च फूल बुलाए दुख दर्द मन ते बो जाए सच व्यापार गुरु व्यापारी दर कह वेखे तुम्हारी काटी रखमण माए नानक बहना वेदाय तिस्ते दूर कहाँ कुजा विर राखण हार तय निरपुज पै सगल पो मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे जिस पर राखे तिह नाई दुखी नाम जुदमन हो असूख चिंता जाए मिटे अहंकार तिह जन को कोई न पहुंचन हार सिर उपर ठाडा गुर सूरा नानक ता की कारज पूरा मतपुरी अमर जा के दृष्ट दर्शन पेख दुर श्रेष्ठ चरण कमल जा के अनु सफल दर्शन सुंदर रूप धन सेवा सेवक परवान त्रिजामी प्रखरदान जिस मन बसे सुख निहाल दा गिने गावत काल अमर पय अमर पद पाया सत्संग नानक हर ते आया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टवाई संत संगंत्र प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक कसकट माया नुकरंग नाना दिष्टाय नौन तम प्रभु का नाम देहि मैं इसका विश्राम
सुन समाधन तै नादे कहन जय सुर समाधे तिन देखे सब दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहरण अंत घट घट व्यापरै भगवंत धरणमय आकाश मयाल सब लोक पूर्ण प्रतपाल बाण तिन पर्वत है पारपुन जय सिया गत सक्रम पौन पाणी बैसंतर माय चार कुण दय समाय तिसे भिन्न कोठा गुरप्रसाद नानक सुख पाव भेद प्राण समृत मैं देख सस्य सुर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल न कम डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई गुणे मोल सर्व ज्योत मैं जा की जो तारे स्वामी उत्पाद गुरु प्रसाद ब्रह्म का नाश नानक तिन मैं विशाल संजना का पे खंसा ब्रह्म संजना किर दे सब धर्म संजना सुने सो वचन सर्व व्यापी सामग्रह राम संग्रचन जिन जाता तिसके रह सत वचन साधु सब कैद जो जो होए सोए सुख माने करण क्रावण हर पव जाने अंतर बसे बार पे होए नानक दर्शन देख समोए आप साध किया सब सत तिस प्रभु सगल उत्पाद तिस पावत करे विस्तार तिस पावत एक अंकार अनकला लखन जाए जिस पावती ले मिलाए कम निड़ुकन कहे दूर आपे आपा भरपूर अंतर का जिस आप जनाए नानक तिस जाने आप बुझाए सरभूत आवरतारा सरुण पेखनहारा सग समग्री जाका तना आपन जो साहब सुनाम जानी खेल बनाया अग्ञाकारी कि नीमा आया सबके मत अलिप तौरा जो कुछ कहना सुहा पे गाय आग्ञा आया वे आग्ञा जाय नानक जा पावे तल समाय ते हुए सुनाए बुरावरे कहो किने कुछ करा भला कर सुधा नहीं किया पे जाने अपने जीक आप साज धारी सब साज ओत पोते अपन संग्राज ताकि कदम कही न जाए दूसरो दसो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक जान जो जाने तिसना सुख होए आ मिलाए ले प्रभ सोए धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्ति सृदय भगवंत धन धन धन जने आया जिस प्रसाद सहयोग तराए जने आवन कै सो आओ जन के संग ते आवे नाम आप मुक्त

पूरे गुरु का सुन हृदय सिमरो गोविंद मन त्रिकुत्र चंदासन त्यागोत्र संजना की तुरमण मंग आप छोड़ बेनती करो सा संगे कणसागर तरो हरतन की परले भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सा जनन सा संग पज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोविंद मृत रसपिय चित व नारायण एक एक रूप जाके रंग ने गोपाल दमोदर दीन दयाल तुक भंजन पूर्ण कृपा सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कह धार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल रतन सुनत कमाओ तो दुधार आप त्रै लोग निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लग हर रंग जय जय सवत नाथ वा जय सुन सुनंद करे प्रभु गा जय प्रगटे गोपाल मात के माथे नान कुदरे तिनके साथ शरण जोग सुन शरण आए कर कृपा प्रवाह मिलाए मिट गए बैर भय सवरे निमृत नाम सत्संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होय सेवक की सहित आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन सुना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक ने वीखे हमारी प्रभु की स्तुति करो सुनमी सावधानी का करची सुखमणि साहिब गोविंद गुण नाम जिस मन वसे सोध निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट समलोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन काल चले जन सोए नानक सी प्राप्त होए खेम शांत रिद नाम निध बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध विद्या तप जोग प्राप्त आन ज्ञान से सुतम स्नान चार पदार्थ कौन पर गास सबके मत सकल ते उदास सुंदर चतुर्दत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन के मुख फणे गुरु नानक नाम बचन मन सुने यह निधान जपे मन को है सब जुग मै ताकि गत होय गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कूड़ो परा सा संग मिटे संत कृपा ते जम ते छूटे जाके मस्त क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत ते जने आवे हर प्रवचित जन्म मरणता का दुख निवार दुर्लभ दे तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृता की वाणी एक नाम मन मह समाणी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के गर्म सब ते ऊचता के शोभा बने नानक गुण नाम सुख मणि दुख रोग बिन से पै परम